0: रहते क्या कर रही है तरपी आ गया बावलट
1: कौन
0: पता नहीं दारूपी की गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
1: फालतू है साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है चल चल चल चल चल, चल, चल, चल।